0: बब्बे पो अस्सी नब्बे पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो.
1: Your life, your music, your 89.1 FM, NTN Radio.

सवाटू पुच्ची वलती गुड़िया के बा मेरी या खराब के तन्ने भी नजर आ रही सा बीगी बीगी निकर में छोरिया मंडरा रही सा एक ब्लांकी स्कर्ट रवा भी नीचे जा रही सा ऊपर से यू लड़की नीचे ते क्यों भारी सा पीसा रूम।